विंटर्स कैनबरा में शुरू हो गई हैं और विंटर्स जब आती हैं तो विंटर हॉलीडेज भी आते हैं और पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कैनबरा में और यू नो फॉर दैट मैटर एनीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया इज दैट दे प्लान ट्रिप्स यू नो इंटर स्टेट टू अदर कंट्रीज फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम और वो जो अपनी एनुअल लीव्स होती है वो बचा के रखते हैं इस टाइम के लिए. आपने शायद सुना होगा कि कुछ एक कंट्रीज हैं जहाँ पर क्रिसमस जो है यूजुअली जो बाकी सब कंट्रीज में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनको विंटर में क्रिसमस का मजा लेने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज जो सदर्न हेमिस्फीयर में है वहां पर जो क्रिसमस है वो समर्स में आता है और इसीलिए एक कॉन्सेप्ट है जो कहा जाता है क्रिसमस इन जुलाई जो पीक सीजन होता है यू नो मिडवे टुवर्ड्स द विंटर सीजन स्पेशली इन कैनबरा जहाँ पे हम क्रिसमस इन जुलाई मनाते हैं और ये वो टाइम होता है जब यू नो पार्टीज म्यूजिक इवेंट्स गेट टुगेदर गिफ्टिंग ये सब चलता है. बट आज के जो एसीटी देसी के एपिसोड में हम जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिविया अबाउट दिस थ्योरी जो हम कहते हैं क्रिसमस इन जुलाई और सुनेंगे कुछ ऐसे गाने जो इंस्पायर्ड हैं बच्चों को लेके हॉलीडेज को लेके और हॉलीडे सीजन में क्या क्या कर सकते हैं ये हम जानेंगे आज के एसीटी देसी के एपिसोड में. तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं आपका अपना देसी आरजे विकास और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनबरा और 4 इन इंडिया ओनली ऑन 2XFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो. नमस्ते सलाम सत श्री अकाल वणक्कम किंचो.

ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि आज का जो एसीडी देसी का एपिसोड है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। तो कॉन्सेप्ट जो मुझे आज इस बार जो आपसे बात करने के लिए इंटरेस्टिंग लगा वो था क्रिसमस इन जुलाई, क्योंकि विंटर हॉलीडेज तो चल रही है कैनबरा में और मेरे अपने भी जो डॉटर है वो भी स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम में है, और कुछ एक दिन ऐसे होते हैं जब स्कूल हॉलीडे प्रोग्राम में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था। तो ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम कैनबरा में, अगर आप ऑलरेडी कैनबरा में हैं और आपके पास कुछ और प्लान नहीं है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं कैनबरा में रहते हुए, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और इसके साथ में ही हम बात कर रहे हैं कि क्रिसमस इन जुलाई और वाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन जुलाई। तो The common belief is that Christmas celebration in July started in Europe around 80s. Christmas summer में मनाया गया, और जो ऑस्ट्रेलिया और जो सिमिलर कंट्री जो सदर हेमिस्फीयर में थे तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो क्यों ना हम क्रिसमस विंटर्स में मनाए जो जुलाई में आता है। और इस तरह से हम समर्स में तो ऑलरेडी मनाते हैं क्योंकि दिसंबर जो सीजन होता है वो समर का सीजन होता है, और यहाँ पर जो जुलाई है वो विंटर का सीजन होता है। तो थीम ऑफ विंटर जिसमें स्नो और सैंटा क्लॉज और रेनडियर और वो जो प्रॉपर क्रिसमस के सारी चीज़ें होती हैं वो विंटर्स जुलाई में होती हैं और जुलाई में मनाया जाता है। वैसे तो एक और भी थ्योरी है कि फ्रांस में अराउंड 1890s पे एक फ्रेंच ओपेरा ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें एक सीन था जहाँ पे बच्चे रिहर्स कर रहे हैं क्रिसमस कैरल्स गा रहे हैं जुलाई में, एंड वहाँ पे जो एक कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि इफ़ यू सिंग क्रिसमस इन जुलाई यू रश द सीजन, तो क्रिसमस पहले आ जाएगा। और इसीलिए शायद ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है कि क्रिसमस को जुलाई में मनाया जाता है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया के अलावा न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, पैराग्वे जहाँ पे ये लार्जली सेलिब्रेट किया जाता है, यूएस में भी किया जाता है, कनाडा में भी किया जाता है, बट इसके अलावा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सारी कंट्रीज हैं वो तो दिसंबर में सेलिब्रेट करती ही हैं। क्रिसमस के बारे में और बहुत सारी और चीज़ें जो आप कर सकते हैं कैनबरा में रहते हुए उसके बारे में हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ।

बच्चों की दुनिया अलग ही होती है और यू नो वो क्या क्या सोचते हैं और यू नो उनको तो सिर्फ मतलब होता है कि कैसे यू नो दे कैन हैव द बेस्ट टाइम पॉसिबल। और छुट्टियों का टाइम ऐसा होता है कि जो यंग माइंड्स होते हैं, एनर्जेटिक माइंड्स होते हैं, उनको ऐसी चीज़ें करानी ज़रूरी होती है ताकि वो यू नो ब्रेन को भी ऐसी एक्सरसाइज मिले और जो दिल है वो भी उसके साथ बहलता रहे। बहरहाल क्रिसमस के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्रिसमस इन जुलाई का जो यू नो फ्रेज है या जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो इसके साथ एक ट्रिविया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इन 1933 इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द टर्म क्रिसमस इन जुलाई वाज मेंशन्ड इन प्रिंट मीडिया एंड दैट वाज इन वॉशिंगटन पोस्ट। इसके साथ ही एक मूवी भी बनी 1940s में क्रिसमस इन जुलाई के नाम से ही, हॉलीवुड मूवी, बट उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था और एक थोड़ा सा यू नो फनी वे या पन इंटेंडेड वे में ये मूवी बनाई गई थी, जिसमें होता क्या है कि जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है उसको ऐसा यू नो गलती से लग जाता है कि उसने $25,000 की लॉटरी जीती है एंड ही बाइज प्रेजेंट्स फॉर हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली इन जुलाई एंड इट वॉज ओरिजिनली यूज इन द मूवी टू इन्वोक द आइडिया दैट Christmas has come early because क्रिसमस एक ऐसा टाइम होता है जब हम अपने लव्ड वंस को और यू नो सेलिब्रेट करते हैं, छुट्टियां होती हैं, एंड ऑफ द सीजन होता है, न्यू ईयर आने वाला होता है। तो लिटरली यू नो इन दैट सेंस इट दिस मूवी वॉज मेड इन हॉलीवुड इन 1940s कॉल्ड क्रिसमस इन जुलाई। बने रहिए मेरे साथ इस ब्रेक के बाद, यानी इस गाने के बाद हम जानेंगे कुछ एक चीज़ें जो हो रही हैं कैनबरा में, जहां आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और खुद भी अपने बचपन को याद कर सकते हैं। आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी राज्य विकास के साथ, ये है ACT देसी।

आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और ये कुछ गाने जो मैंने बजाए यू नो आपको कुछ अपने बचपन की याद कराई होगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें और इवेंट्स और गानों को लेके मैं हमेशा आता रहता हूँ और आगे भी आता रहूँगा। आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे फेसबुक पेज को जो है facebook.com/ACTDesiFM या आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है content-artist.com और देख सकते हैं वेरियस इनिशिएटिव्स जो यू नो अंडर कंटेंट आर्टिस्ट मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, विच कैन बी फ्रॉम यू नो कंटेंट क्रिएशन टू रेडियो टू म्यूजिक टू यू नो सपोर्टिंग न्यू आर्टिस्ट, और आप भी इस सब का पार्ट बन सकते हैं। तो जब तक मिलते हैं दोबारा अपना ख्याल रखिएगा, स्टे काम एंड एक देसी, शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते वेयर एवर यू आर लिसनिंग दिस प्रोग्राम।

0: वो देख वो क्या है?
1: पंछी है क्या?
0: ना रे पगले, प्लेन।
1: अरे देख अंडरवेयर बाहर है, सुपरमैन।
0: ना, दैट इज बाबा जी।